केते तेरे राग परी से कहिए, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे, गावन तुदनो चित्त गुपत लिख जानन।

गावन तुदनु जोद महाबल सूरा गावन तुदनु खाणी चारे गावन तुदनु खंड मंडल वर गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनु गावन जो तुद पावन।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धर्मस्तक लिख्या लिखास। तन तन सत संगत जित।

गुरु प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरियाराओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोए न किसकी तरिया, सिर सिर जग संभाही ठाकुर काहे मन पौ करिया। उड़े उड़ा वैसे कोसा तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अस्त सिदान

हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाना। तू आपे दाता आप

जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा

पई। हमरी करो हाथ दै रच्छा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दै मुहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै।

प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करे हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को सब गुण सिख दियो, सत्रन को पल मो बध कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद्कर करा करता रा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्क करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन शिष सब तारे।

बैठा सिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आजुगात स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तब

जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकटने आए हैं। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला।

भोगते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्ब ठोर मोह हो सहाई।

दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सर से, पूरे गुरते जानी सुनते।

सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवे तुदयाहे। श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना।

0: ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 673 तो यह हुक्मनामा शुरू होंदया 674 से संपूर्ण होंदया जी गुरु अर्जन देव महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया तनासी राग का शब्द है जी वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह औसत का योग साहब सिंह जी महाराज कृपा जी संगतन पुछयाणी सुखमी साहब के सुरपुर पाठशाह में कीते उपरंत संध्या समा जान के सोधर रियासत पाठशाह में कीते अरदास शाहियां करी ने महाराज बख्शे पितर गुरु सर कीते सत्संग जी स्वास्थ्य में गुरु साहब ने गुरु घर सन बख्शिश किया है तो सत्संग जी आप संगतान की जरूरी सूचना है कि गुरुद्वार हेवड़ 17 मई को सवेरे 10 बजे अमृत संचार हो रहा है तो सारी संगत को बेनती है जिन्होंने अमृत नहीं छक है उन्होंने बार बार यह बेनती है कि अमृत छको तो गुरु वाले बनो सो हेवड़ गुरु घर 17 मई को सवेरे 10 बजे अमृत संचार होना है जरूर पहुंचने की कृपा करो जिन्होंने अमृत नहीं छकया जाके छको सत्संग जी आपको पता है कि गुरु घर लास्ट साल की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये वास्ते बेहद मारे लोड़ है महाराज बख्शिश हुई है बेंत परिवारों वालों बेंत माया भेटा की गई है वो मुटपाके हैं सास ने जिन्हें जिन्हें अज तक माया नहीं दी अपना दसंत संपूर्ण नहीं किया उन्होंने सारे बेनती है कि जरूर तुम जिनी जिन वध तो वध अपना दसंत कढ़ सकते हो कढ़ के गुरु घर माया दो ताकि जो प्रोग्राम है इस बड़ी शब्द न संपूर्ण किया जा सके सात सिंह जी आप संगत बेनती है कि अब भाई पिंद्रपाल सिंह जी आ रहे हैं जिन्होंने कथा करनी है सत 7:30 तो लैके 8:45 तक 7:30 to 8:45 तक फ्री टाइम यही होया करेगा इन्हों का इस वास्ते सारी संगत ने बेनती है कि जरूर पहुंचो इस समय का लाभ उठाने यत्न करो सो सात सिंह जी आप संगत ने बेनती है कि 12 मई को है सरहंद फतेह सो उस दिन भी आना है तो जो उस समय के गुरुकबीर ने संघा ने साढ़े वास्ते किया उसने याद करिए तो उन्होंने धन्यवाद करिए 15 मई को है संघा जेठ के महीने की आप संगत ने हाजरियां पा लिया ने 17 मई को है छोटा घल्लूकारा कानूआ ने छंब वाला गुरदासपुर जिले प्रशासन की सारी संगत ने बेनती है हाजरियां पढ़ो उन्होंने सिंह सिंह ने बच्चों ने जो साढ़े वास्ते कुर्बानियां की उन्होंने याद करके चेतना की रिपेट करिए और सत्संग जी हूँ भाई ओंकार सिंह जी स्टेज पर बैठे ने वो आरती कीर्तन आप जी ने ठीक 6 बज के 50 मिनट तक मार सचा ने जोड़ वास्ते मान पुराला करे इन्हों तो बाद कीर्तन करे भाई सुनाम सिंह जी 7:30 तक 7:30 तो लैके 8:45 कथा करे भाई पिंद्रपाल सिंह जी भगवान भी साढ़े पास पहुंचे ने आप संगत ने बेनती है जरूर 7:30 तो लैके 8:45 तक कथा श्रवण करो भाई सब तैयार हो कीर्तन हम करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

पावन वचन कबीर साहब जी रावतिया ने श्रवण किया है। राम नाम की बंदगी का ऐसा कोतक वरत गया, ऐसी खेड वरत गई कि जंजीरा विच बन के हाथी के पैरां तक सुटिया। इत्थे ही वसनी कबीर दी जय जयकार। ऐसे लोग हमेशा ही होते हैं जेडे जय जयकार बर्दाश्त नहीं करते, पिछों ही चलता आ रहा काम। कहंदे ने जंजीरा नू बन के शरीर नू जकड़ के फिर पानी विच भी सुटिया, पर कौन जाने हुण कबीर राम बन गए ने, राम कबीर बन गए ने। ऐसी अंदरों खेड वरत चुकी है। आप उन्होंने बोलिया, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर। निरंकार ने कहंदे ने उत्थे भी रखवाले कीते, लहर आई पानी दी, सारे बंधन तोड़ दिते, मृगशाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। किनका मात्र भी जिन्हां दे अंदर सेवा सिमरन दा पैरा बन जाए, किनका मात्र उन्हां दे जीवन दी जाच बदल जाती है, सोच बदल जाती है, बोलण दा तरीका बदल जाता है। हुण उन्हूं महसूस होण लग पैंदा है स्वास कीमती ने, किते ऐसा ते नहीं मैं पापां दी टोकरियां अपने सिर ते इकट्ठी कर लवां, मुड़ के तुरया भी ना जाए, हिसाब किताब भी ना दिता जाए। कच पकाई उत्थे पाई, धन गुरु नानक साहिब जी जेड़े पक्कियां पका गए ने महाराज दी बाणी नू जीवन दा आसरा बना के, जीवन नू महान बना गए ने। वो जिउंदिआं जी भी प्रवान हो गए, मर के भी प्रवान हो गए। ये पावन पंक्तियां गाओ, सतगुरु तेरे नाम नाल, तेरे वचना नाल, तेरे कीर्तन नाल साड़ी अंदरों बन जाए। गाना मुबारक है, सुनना मुबारक है, पर जिन्ना चिर वो जीवन विच नजर नहीं आता प्रैक्टिकल, प्रशादे दा रोला पाई जाओ छक के ही भुख मिटदी है। इंज सच्चे पातशाह ये भोजन सानू छका दिओ तां कि अंदर ऐसी बख्शिश वरत जाए, जीवन महान हो जाए। क्योंकि जीवन वड्डी कहानी नहीं, जे जीवन महान हो जाए ते फिर जीवन भी वड्डा हो जाता। मन ना दिगे

सच्चे पातशाह जी मेहर करन कृपा करन बाणी दा एक एक बोल साडे साडे जीवन विच महाराज दा ए वचन जिंदगी दा आधार बन जाए ताकि ए लोक सुखी है पर लोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले दी दात सब दी चोली पै जाए जी भुल चुक दी खिमा आओ भाई सतनाम सिंह जी आप जी नु कीर्तन द्वारा निहाल करन असीस देव नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

0: सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दी बाणी दे अर्थ करदियां विचार करदियां बेअंत फुल्लां होईयां ने साध संगत जी बख्श देना। कल तो आपां शाम नूं रोजाना भगत कबीर साहिब जी दे बचना दी विचार करांगे जी। मैं श्लोक तां पढ़ दिता जे घरों पढ़ के आउणा होवे। कबीर लागी प्रीत जान स्यों भर जाय लोक अजान, तां स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म है दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत कहा, नानक ते मखुजले केती छुट्टी ना। जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत कहा, नानक ते मखुजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का। तू ठाकुर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारक। सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत,

बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन ही लही है। रहाओ कोट पराध हमारे खंडो हो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले रखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले रखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सोहेला राघव जी दीप्ति महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीरता की है करते का होए विचारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हो वारी जित सोहेला सदा सुखे रहाओ नित नित जियड़े समालियां देखेगा बेबनहार तेरे दाने कीमत ना पवे त्रिदाते कमल सुमार संबत सह लिखया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन सिसनिया जो है सब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदले नित पवन सद्दन हारा सिमरे नानक से दे अमन राग असामल पहला छे कर छे गुरु छे उपदेश गुरु गुरु एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई होए राहो विसे चसियां करियां फेरा खेती बारी माहो होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के खेते वेश राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खनना तेरी आरती अनहता शब्द वासी सहस्तव नैन नन्ना नैन है सोहे को सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तेते चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो इस पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोह आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोड़ नगर बहु भरया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंगली पन वड्डा हे कर दंडौत पन वड्डा हे रहाओ साकत हर साधना जानया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुके दुख पावे है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भाव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत दहन की बेला इहा खार चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सहना रे कासवारे रहाओ एहो संसार विकार संसेम है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एहो रस अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई भी हाजो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करणौ निध आवै धाए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। सब थाई

हे निमाण्यां दे माण नेताण्यां दे तान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दी पवित्र हजूरी विखे सजे होए दीवाना विच अमृतमय बाणी दी कथा विचार तुरकी बाणी रब्बी बाणी दे कीर्तन कीते ने समुचियां सेवावां निभांदिआं होईआं भुल्लां बख्श देणीआं सतगुरु जी दीवाना दी समाप्ति कर रहे आ आप जी दे सुख आसन दी सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ कीते ने आप जी दे दर घर दे टहलियां पासों होईआं भुल्लां बख्श देणीआं जी अगों वास्ते सिर ते मेहर भरिया हथ रख के अपने दर घर दी सेवा सावधानता सहित सोझी बख्श के लैणा करनी सतगुरु जी कृपा करो आप अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो रात सुख शांति नाल बतीत करनी अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शिश करने जी सही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा।

ਸਾਹਿਬਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸੇਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 791 ਔਰ 792 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹਿ ਮਿਟਾਵਉ, ਸਿਮਰਉ ਜਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਅਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨ ਸਹਿ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬੇਗਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭੱਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਯਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ,
प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निःचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जान जिनको प्रभ मया, नानक तिन जान सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहुकुंठ जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सोत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, जय महापयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै, जय मुश्किल होवै अत पहारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावह सुख कन्हेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधना परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनेक माया रंग तिखना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जिह मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही, अनक बिघन जय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनेक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम, हौ मैला मलक बहुना धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै, ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाहियै साधकै संग, जिह मार्ग के गने जाहि न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जहे पैंडै महा अंध गुब्बारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को ना सियानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जय महापयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जहा तिरखा मान तुझ आकर्खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन बिसराम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट, हर जास करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ऊट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जाने, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जान संग के ते तरे, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान,
जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कार राती वर्त नेम करहे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरै चेर जीवै महा उदास तपी सरथी वै अग्न माहे होमत परान कनक असव है वर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमुख निमुख कर शरीर कटावै तौ पी हो मैं मैल न जावै हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिन स अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कबहु न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत सयाणप जम का भाव व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगै नहीं सिजै छूट सनाही उब पयाल मोहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग एहो मैं शोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताक बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आप सकाउ जो जाने नीचा सो गुनिये सब ते ऊंचा जाका मन होय सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन आपुने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन कौ तन तेरो नाउ नथावे कौ नाउ तेरा थाउ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देवह दान कर्ण करावनहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जान सुकोए सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जे कट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया की गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिने उबारिया बार बविस्था तुझे प्यारे दूध भार चूबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख पयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बस है सुत भरात मीत बंता संग हस है जिह प्रसाद पीवै है शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोग है सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध बे आपे नानक काढ लिहो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नाव निद पावै तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसै बिसारे मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोट झूठ संग मचै जो छडना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तब प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत बिकराल नानक काढ लिहो प्रभ दयाल
करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे तरह अथा जा कै अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सहज सुमात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लिहो ओढ़ निभावै कहा बुजारत बुझै डोरा निष्कही है तो समझे पूरा कहा बिस्न पद गावै गूंग जतन करै तो पी सुर पंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तास्यु प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवे मूड़े।

विश्वासु संत जना का पीखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकिए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक ओंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखन हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिपतो रह जो किश कहना सो आपे का है आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तां लए समाए इस्ते होए सो नाही बुरा ऊर कहो किने का शुकर आप भला करतूत अत नीति आपे जाने अपने जी की आप साच थारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिस का किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक एहो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का इह सुआ जन कह संग चित आवे नाउ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा का नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वाहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमुलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तर लोकहने सुतार सफल जीवन सफलता का संग जा कह मन लागा हर रंग जय जय शब्द ना हदवाजा है सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पये सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पये गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तहारी नानक निब ही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सहो ते निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जसाय प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जान कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकि गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हरे नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै
दुलाभ देहे तत्काल उधार है। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚਪੈ ਚੰਤ ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਣ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਕ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ, ਕੋਟਿੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਸਾਹੀ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਿਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤਵੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਣ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਣ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮੋ ਸਰਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੌਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ
अनंगी अनामी समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेकीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रू कर्मे नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानं सर्वं परणाशी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता दूर्द अर्धंग गंग उगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं छेदी अपेथी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी चंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा ऋत सिद्धं निवासी चरपट छन त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छन्त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुर कपाल सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम थाम न जात जाक रूप रंग न रे आद पुरख उदार मूर्त जौन आद शेख देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए फैल अनुराग नाम काम हीन पेख ताम न जाए सर्वमान सर्वत्र मान सदय मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जाने जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जाने के जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरा चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिख जग जापी जह जाप आद देवनाद मूरत थाप सब जे थाप परम रूप नीत मूरत पूरण पुरख पार सर्व विश्व रचियो स्वयं भाव गढ़ निपंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत भूत लख वेश अंग रागना रंग जा कै जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमिकन उस्तत एक कुरपुरख अवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आदि रूप असूत अंग हिन भंग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व अंता सर्व तेन पे सर्व शास्त्र न जाने ये रूप रंग रेत परम वेद पुराण जाक नेत भगत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र ने अवय चित मत पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन भंग उपमा नंगन पौ प्रकाश निस्तिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवन देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालान बाल रंकान रंकालान काल अनपूतांगा पापांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड
आलिश्य कर्मादृश्य तर्म सर्वापर्णा दंड बाढ़ चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजंग प्रयाचन चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासी चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्रय न मित्रय न परमंग न पित्रय न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्र प्रथिशय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती चंद प्रसाद कथते के आ चिज देशय के आ भिज पेशय के आ गंज कर्मय के आ पंज परमय के आ भिज लोकै के आ दित सुकै के अवतूत बरनय के बेभूत करनय के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक बरने के सर्वा अपरने के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बरमंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदु अदेव है के आपु अभिव है के चित्रंग वहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रेहा कह के पाक बे है के गैबुल गैब है के फूल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुखय के सर्वत्र भूखय के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र दिशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के अकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलामय सलीकत मदामय गनी मुल शिकस्त गरीब

भंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनी मुल्क खिराज हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनी मुल्क खिराज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुजुक्त सुदा हैं, सुदैवं स्वरूप हैं, अपेधी अनूप हैं, समस्तों पर आज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्त सलाम हैं, सदैव अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओ अंगाध रूप है, अनाध स्वरूप है, अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिवाद्य अगंधे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुवत स्वरूप हैं, छिज हैं, चूत हैं, किनर्कं प्रणास हैं, प्रत्युल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद भंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपरम हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अवय हैं, भूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगा हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, नित्य हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चिरपट चंत्व प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता सर्वल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासी सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक है मितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है अमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमीसुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परमीस है समस्तुल अदीस है अदीसुल अलेख है हमीसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि असलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार चंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंडु अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिश विश अपंड जल थल महंत दिश विश बेअंत अनुभव अनास त्रितर तुरास आजान बाहु इक्कै सुदाहु ओंकारात कथनीय नाद खलखंड खयाल गुरुबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज न बात अनझंझ गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडिठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है तृत की तरण है जग की करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विसंबर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जपै थपा थपै कृता कृत्य अमृत अमृत्य अमृत अमृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी त्रित्य मतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य अमृत अमृत है अजबा कृत्य अमृत अमृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्पर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है
सर्वात्म आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रयाचंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार लंके, नमो वास आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम गह अटाह अनाथ्य परमाथ्य अजोनी अमूनी नाराग नरंगे न रूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद। नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनी में हरियं करियं करिमुल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सोयाम।

अंग संगे अपंगंग बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये। श्रावक शुद्ध समूह सिदान के, देख फिर कर जोग जति के। सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक, संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो, मत को न देखित प्राण पति के। श्री भगवान की भाई कृपा ऊंते, एक रति बिन एक रति के। मातिम तंग जरे जर संग, अनूपो तंग सुरंग सुवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे। पारी पुजान के भूप भली बिद, न्यावत शीश न जात बिचारे। इति पहे तो कहा पै भूपत, अंत को नांगे पाए पधारे। जीत फिरे सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजित गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। भूत पवेख पुआन के भूपत, कौन गने नहीं जात बिचारे। श्रीप श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दम दान, सुसंजम नेम अनेक बसिख है। वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सुबान के पिक है। पौन आहार जति जद तार, सबै सुविचार हसार की दिख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लिख है। शुद्ध सिपाह दुरंत दबाह, सुशास न दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरिन मरूर मुवासन, मातिम तंगन मान मलेंगे। श्री पर श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहां निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े भरियार, अपचार है स्वार की धार पछैया। तोर देश मलिंद मुवासन, माते गजान के मान मलैया। गाड़े गडान के तोड़ नहार, सुबात नहीं चकचार लवैया। साहिब श्री सबको सिरनायक, जाचक नेक सो एक देवैया। दानव देव निंद निशाचर, भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन, पापन के बो पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे, जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र जिंदर निराध, जौन त्रलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान, अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म हेसर विष्णु सचिपत, अंत फसे जम फास परेंगे। जे न श्रीपत के प्रस है, पगते नर फिर न दे तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन, मूंद कै बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिये सास समुन्द्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। भास कियो बख्यान सो बैठ कै, ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो। साच कहूं सुन लेहु सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर वाची दिशा में, काहू पछा को शीस निवायो। को बतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री

विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आदंतिक कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुँह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंका निर्भका निर्लंब आद नील नाद संभूता का मूड उचारत पेता जाकू पेव न पावत वेदा ताको कृपान अनुमानत महामूड कच भेद न जानत महादेव कौ कैत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के विसजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जीर जिसे तिज कीनी उत भुज कान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल।

सर्व ठावर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छय करता। श्री आस तुझ जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांचत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत 17 है, सैस बनी जय अर्ध सैस पुन तीन कही जय। भाद्र सुदी अष्टमी रवारा, तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा। सोईया

कत कहानी हेमन चंचला चतुराई किनै न पाया चतुराई न पाया किनै तू सुन मन मेरिया हे माया मोहनी जिने तो भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुरबान कीता तिसै विट्टा हो जिन मोह मिटा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किनै न पाया हे मन प्यारिया तू सदा सत संभाले कुटुंब तू जी दिखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम मूले न कीचै जितंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले गम गुजरा तिरंत न पाया अंतु न पाया किनै तेरा आपन आप तू जान ही जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने कहता विखै सब तू है जिन जग तू पाया कह नानक तू सदा गम में तिरंत न पाया सुर नर मुन जन्म मृत कोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तुद उपाय एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुटा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता के भी भिख मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्यो तिखी वालो निकेत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना सुमानी कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यो तू चलाहे तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावहि कर कृपा जिन्ना मिलाहि से हर हर सदा त्यावहि जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहि कह नानक सच्ची साहिब ज्यो पावै तिवै चलावहि इहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया यो तिनकै मन वसिया जिन धुरु लिखिया एक फिरै कनेरे करहै गल्ला गल्ली किनै न पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जिना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सह सुप संग सुभाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिन गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाई सहसै जीव मलिन है कि संयम धोता जाए मन तो शब्द लागू हर स्यो रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै इस ऐसा इव जाए जी हो मैले बाहरू निर्मल जी हो ता मैले तिने जन्म जुवै हारे आए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारे आ वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेता लिया कह नान जिन सत जिया कूड़े लागे तिने जन्म जुवै हारे आ जीहो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जीहो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी कूड़ की सो पहुंचे नाही मन ससमानी जन्म रतंजनी कटिया भले सेवन जारे कह नान जिन मन निर्मल सदा रह है गुरु नाले जे को सिख गुरु सिती सनमुख होवै ता सनमुख सिख कोई जीहो रह गुरु नाले गुरु के चरण हृदय ते आए अंतरात्मा समाले आप चढ़ सदा रह परने गुरु बिन वरन जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते वे मुख होए बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होरथे कोई पुछब वे किया जाए अनेक जुनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाख चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी अंसर बाणी जिनको नजर कर्म हुए हृदय तिना समानी पीवो अमृत सदा रहो हो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावे सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वगाणी हर हर नित करह रसना कहा कछु न जानी जित चिनका हिरले माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुरु का शब्द दरदान है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागायो हुआ समाओ सब सेती मन मिलया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पुपाए कह करता आपे हुकुमरताए वेखै गुरमुख सह बुझाए तूड़े बंधन हुए मुख शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हो वै कस्यो लिबलाए कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए सिमर शास्त्र पुन पाप
विचार दे तत्त्व सार न जानी, तत्त्व सार न जानी, गुरु बाजो तत्त्व सार न जानी, ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतिया रहन विहानी, गुरु कृपा ते से जन जागे जिना हरमन वसिया बोलिया अमृत बाणी, कह नानक सो तत् पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी, माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, बड़े दाता जी अगन में आहार पहुंचावे, उसनु क्यों पोय न सके, जिसनु अपने लिव लावे अपने लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है, कह नानके बड़े दाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया गुण सब इको जे ही करता खेलर छाया, जा तिस भाणा ता जमिया परिवार भला पाया, लिव छिड़की लगी तृष्णा, माया मृवरताया माया जितर विसरै, मूप जय पाओ दूजा लाया, कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी, तिन विचे माया पाया, हराप मुल कह मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसे विटो रहे लोक बिल लाया, सा सत गुरु जी मिले तिसनो सिर सोपिया, विचो आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए, हराप मुल कह भाग दिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए, हरास मेरी मन वन जारा, हरास मेरी मन वन जारा, सतगुर तेरा जानी, हर हर नित जपे हो जी हो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, इहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे भाणा, कह नानक रास मेरी मन हुआ वन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए, होर कित्या जिचर हरस पल्लै न पाए, हरस पाए पल्लै पिए, हरस बोढ़ न तृष्ण लागे आए, हरस करमी पाइए, सतगुर मिला जिसे आए, कह नानक होरन रस विसरे, जार वसै मन आए, शरीरा मेरे यार तुम मैं जोत रखी, ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया, हरे आपे माता पे पिता, जिन जियो पाए जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत रखी ता तू जग में आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना प्रजापे अनहत वाणी, गुर शब्द जानी, हर नाम

मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया, हे कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नान क्यों शरीर प्रवाण हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, हे नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं ज्योत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया, एहो भी संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई, कह नानक नेत्र अंध से, सतगुर मिले देव दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, सच है सुनने नो पठाए, सच है सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस समानी, सचलक विडाणी, ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनहु, पवित्र हो सच है सुनने नो पठाए, हर जीव गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी, इकना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नव नव नित तिस्तांतन जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जीव गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, एहो साचा सोहेला, सच है कर गावहु, गावहु ता सोहेला कर सच है, जिथे सदा सच ते आवहे, सचो ते आवहे, जा तुद पावे, गुरमुख जिना बुझावे, एहो सा सबना का खसम है, जिस बख्श

साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू

जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देहे, जो प्रभु को मिल बूच है खोज शब्द में। राज करेगा खालसा आकी रह न कोए, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो।

आई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई, जो तेरी शरणागति तिन लहे छड़ाई। नानक वे परवाहु है तिस

सत्संग जी। बोलो जी, वाहे वाहे। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासे भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय प्रगत गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कारण होने दयावता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची के पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पहादार अंतर के हर सस बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छख्या दे चलाई तेरे वाहे दे कंडेट कीता तेना प्यारे सत्यारे की कमाई दे अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लवाईया चरखड़ियां ते चढ़े आरे नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आरिया सिखी ते केसा सत्सा संग निभाया तिना की कमाई दे अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्ता वलगुरु आनंदा ते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चेताव है चेत आमण का सदका सर्व सुख हुआ जहां जहां गुरु खालसा साहब तहरे चरियात देते की फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नहीं है मत उची मत पत के रखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदस्य आई दार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ न छोड़िया गलत दर्शन दार सेवा समाज का अपने खालसा जी ने बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु सरदार जी दोए कर जोड़ करो अरदास तू तो भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास ने आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पान हुए संगत दर्शन ला दे के निहाल दरदार जी हो बेहद बाणिया के पाठ हुए ऐस वे रागी सिंह ने आपके चरणा जा सकी बात कीते ने विद्वान भीर ने अज के हुक्म नामी कथा त्याग की गरीब नवाज इतिहास की कथा की कृपा कर सच्चे पातशाह जी हो हे गरीब नवाज आप बख्शिश करो इन्हें खुशियां आप दी बख्शिया दाता पिद्र कड़ाप जारी दे गया त्यार करा दता आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संग की रसना लायक हुए जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शी करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश दे रखा बख्शी करो जी। गुरु गरीब नवाज आप दी बख्शिया दातों जो नगर तुर सवार प्रवान करनी गुरु नवाज जी आप दी चरना सेवा कर रहे सारे टैली सिंघा सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अरे सदा इस तरह अपने चरना सेवा की भावना बख्शी पालता करो गरीब नवाज जी अमृत वे तो लैके दर से आई साफ संगी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ सागत दर से तिर फिर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी तांतर तार पिता जी सूरा सो पहचान लड़े दीन खेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ने छे खेत दे मां मख नार तार पिता जी हो सचे पातशाह जी सिख कौम के महान यो दे महान शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर सचे पातशाह जी जिन्होंने सरहद फतेह करके उस समय का सचे पातशाह जी गरीब नवाज आप जी कृपा बख्शिश द्वारा जो उन्होंने मतलब उन्होंने जुल्म किए जी उसका हिसाब का चुकाया उन्होंने लोगों का गरीब नवाज नाश किया गरीब नवाज कृपा कर दता जी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के पाए पूर्ण चलने वास्ते उन्होंने राह अपना वास्ते गरीब नवाज अज सिख कौम नौजवान पीढ़ी को समर्था बख्शो भावना की दाज बख्शो उन्होंने पाए पूर्ण चलने वास्ते गरीब नवाज बरबरी बख्शी करने की बात करो मेहर करो दार पिता जी खालसा पंथ सिख कौम से कृपा करके एक दस भाग प्याज की बख्शी करके सतन दाल बख्शो दार कृपा करो हर मैदान दुआन फत बख्शता करो चैनल जुड़ के बने प्यार कृपालता करो जी दार कृपा करो दूर दराज घर बैठी लाइव कथा की सरण कर रही सारी संगत निहाल के प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगत पातशाह जी आपने
ਉਧਮ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰਨੀ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਵਧਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਰ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁਕਾਈ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੇਦੇ ਰੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ਤੁਰਵਾਦੀ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਲ ਨਿਕਲਵਾ ਦੇ ਤਾਰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਜਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ।

गुर बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारी सतनाम। वाहिगुरु साहिब जीओ माझ महला तीजा।

सहज न पाई, गुरमुख सहज सुमावणिया रहाउ। तू आपे सो है आपे जग मोह है, तू आपे नदरी जगत परो वह, तू आपे दुख सुख देवह कर।

वैताही। खरी कुवालियो करूप कुलखणी, सुपने फिर नहीं पावणिया, पियड़ फिर मन वसाया, पूरे गुर हदूर दिखाया।

उपजै पचै हर बूझ नाही, अन दिन दूजै पाए फिराही। मन मुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछुतावणिया। फिर परदेस सिगार बनाए।

आठ पहर तुद जापे पवना, धरती सेवक पायक चरना। खाणी बाणी सर्ब निवासी, सबना कै मन भावनिया। साचा साहिब गुरमुख जापै, पूरे गुर कै शब्द सिंहापै। जिन पिया सी तृपता सी, सच्चे सच अगावनिया। तिस घर सहजा सोई सोहेला, आनंद विनोद।

किन विद मिलिय किन विद बिछरै, एह विद कौन प्रगटाए जीव, कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सुचाल जित पार ब्रह्म त्याई, किन विद कीर्तन गाए जीव। गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जीव। हौ मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख ने कर्मा, गुरमुख करे सुपाए जीव। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिय मनमुख विछुरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जीव। गुरमुख अखर जित धावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जीव। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस्ते होयो अनंता, नानक एक सुमाहे सुमाए जीव। माझ महला पंजवां।

भगती पाए भरे भंडारा, दया तार राखे तुद से पूरे कर्म सुमावणिया। अंध कूप

मात गर्भ में है तुम ही पाला, माया अग्न न पोहे तिन कौ, रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तने अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिस कौ तू प्रभ भया सहाई, तिस तत्ती वाओ न लगे काई, तू साहिब सरण सुखदाता, सत संगत जप प्रगटावणिया, तू

प्रसाद। किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिलो राम, चार कुंट दह दिस प्रमे थक आए प्रभ की साम। तेन दुदैते बाहरी कितै न आवै काम, जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम। हर नाहा न मिलियै साजनै कत पाइयै विश्राम, जित घर हर कंत न प्रगटई भठ नगर से ग्राम। सर्व से सर्व सिगार

जुड़न दा लूड़ी है जिस अगे सब निवन हर सज्जन दावन लगे आ किसे न दे बन माणक मोती नाम प्रभु उन लगे ना ही सन रंग सबे नारायण है जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने सेई कही है धन

0: सतगुरु जी दी पावन पवित्र तनगी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्रसाद संगत जी हो प्यार साहब असीस बख्शिश करते हैं, एकाग्रता बख्शिश करते हैं, गुरु की बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन धूप लिख नहीं आवे। आओ उस महान बख्शिश जिहड़ी सानू कीर्तन दे रूप मालिक ने बख्शिश कीती है प्राप्त करन लई, उस रस नू माणन दे लई जिहड़ा रस तुसी रोजाना ही अपने उस पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब तो दूर बैठे टीवी राही श्रवण करते हो कि यूं महसूस करते हो कि असी धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहब विखे बैठे हुए हैं। उसी आनंद विच आपां ने जुड़ के इत्थे कीर्तन करना है, तुसी सारे ने नाल नाल सहयोग बख्शिश करना है, रल के कीर्तन करना है, सारे ने नाल नाल रसना की हाजरी भी लवानी है। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे, आओ गुरु रामदास पातशाह जी कृपा करन, आप अपना मेरा पर हथ रख के रसना ते बैठ के अपने इस कीर्तन की सेवा लैन। कुछ मिनटा लिया और रल के वाहगुरु का सिमरन करिए, उस तो उपरंत आपकी शब्द श्रवण करोगे। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम।

0: कीर्तन द्वारा समाप्ति है और यह पूजा जो कर दी आप जी क्षमा बख्शिश करनी। विद्वान गुणी जन संगत विच उपस्थित हन, वो जाहिर है अज असी अनजान हाँ, तो कोशिश है कि होर सुचजे ढंग दे नाल कीर्तन कर सकीए, शुद्ध राग दे नाल शुद्ध बाणी दे नाल आप जी नूं कीर्तन सुना सकीए, ये मनोरथ है साडा। तो आप जी असीस बख्शिश करनी, भुला चुका दियां साडे कोल खिमा बख्शिश कर देनियां। तो आप जी फते अर्ज करते हां, वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

0: गुरु मन मांगो
1: आप जोड़ बेनती करो साथ संगत सागर करो
0: हर संग के पर लिहो पंडार नानक भक्त मेल नमस्कार
1: परमानंद
0: भक्त वारू धारो जियो गुरु गुरु बिन मृत जियो गोपाल का मुदर दीन दयाल दुख भजन पूरन कृपाल उत्तम श्लोक साध के बचन अमरीत लाल ए रतन सब जीवन सबल का संग जाकर मन लगा रंग प्रत्येक पालना आपके माथे नानक गुजरे सिंह कह साथे
1: आप मिलाए
0: मिट के बैर भये सब रेन अमृत नाम साध संग लैन आज जाल दे काटते रहते राम नाम सुन दसना कहते
1: प्रसाद
0: करो संत मीज सावधान
1: संगीचा
0: ताकि पूर्ण हुए प्रधान पुल प्रगट कर
1: हुएन
0: काट चला जन सवे नानक जिता प्राप्त हुए विद्या तक जो प्राप्त ज्ञान

तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर दिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहेब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहब जी का आना पटना